0: साहब जो है
1: जी,
0: वो क्या रुख इख्तियार करते हैं
1: जी?
0: क्या वो इस पर कुछ इतियाज करते हैं या कुछ इतम लेने का इरादा रखते हैं?
1: अच्छा,
0: काश के आपने अम्बेसडर साहब से या सिद्दीक साहब से, मलिक सिद्दीक से ये पूछ लिया होता कि उनकी निगाह में ये खबर गुजरी भी है या नहीं गुजरी।
1: दुरुस्त।
0: अक्सर बेशतर तो ऐसा होता है कि हमारे सफात खाने वाले जो हैं खासतौर पर वो बारिश मीडिया पर ज्यादा निगाह नहीं रखते, जो कि रखनी चाहिए, और अगर रखते हो तो ये तो और भी अच्छी बात होगी। लेकिन ये खबर जिसका आपने कहा है, इसमें बड़े भूंगे अंदाज में वाकई ही ये इल्जाम लगाया गया है एक तरह से कि सफीर मुहतरम जो है वो एक ऐसे फर्द की तारीफ कर रहे हैं जो डेनमार्क में, जैसा कि इस अखबार में आपने भी बताया और मैंने भी पढ़ा है
1: जी,
0: पोल नेट डॉट डी के जो जो वेबसाइट है उसके फेसबुक पर ये खबर है
1: जी,
0: तस्वीर के साथ शायद की गई है
1: जी,
0: की तस्वीर खबर है। लेकिन इसमें ये मुतालबा करना कि पाकिस्तान के सफीर को डेनमार्क से बाहर निकाल दिया जाए, इंतहाई अहमकाना और ये बड़ा मुनाफकाना मुतालबा है, और मेरे ख्याल में सफीर पाकिस्तान को इसका नोटिस लेना चाहिए, क्योंकि ये छोटी छोटी बातें अगर नजरअंदाज कर दी जाए तो फिर इसका मतलब ये होता है कि दाल में वाकई ही कुछ काला है। और इनके लिए ये बहुत जरूरी है कि कम अज कम उस अखबार को, उस वेबसाइट को ये मुतालबा किया जाए कि इसे यहाँ से डिलीट किया जाए और माफ़ी मांगी जाए।
1: एग्जैक्टली नसीब भाई, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ, वो ये है कि जब मैंने इस खबर को देखा तो मुझे आपकी तरह बहुत दुख हुआ, तो मैंने जो है एक ईमेल भेजी अम्बेसडर साहब को, हो सकता है उनको कल मिल जाए क्योंकि आज तो अम्बेसी बंद है, और सिकंदर साहब को भी मैंने ईमेल भेज दी और उनसे मैंने दरख्वास्त की है कि इस किस्म का आप पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि आप एक्सट्रीमिस्ट हैं और टेररिस्ट जो है उनकी हिमायत करते हैं उनके, और यहाँ तक उन्होंने लिखा है कि सिकंदर मलिक के बारे में कि वो डेनिश मुआशरे को हमेशा बुरा भला कहते हैं और जो है इंटरफियर करते हैं डेनमार्क के इंटरनल मसलों पे। तो मैंने वो ईमेल भेज दी सिकंदर मलिक साहब को, और लेकिन सिकंदर साहब ने मुझे उसका जवाब ये दिया कि मैं इस पर कुछ, मैंने देख लिया ये खबर, मैं इस पर कुछ नहीं करना चाहता क्योंकि ये वेबसाइट जो है ये तो वैसे ही बेहुदा लोगों की है। चलिए वो उनका ज़ाती मामला है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते, लेकिन मैं समझता हूँ कि जब एक पाकिस्तान अम्बेसी या अम्बेसडर के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगे तो अम्बेसडर साहब को जो है, क्योंकि अगर वो नहीं करेंगे तो फिर ऐसी वेबसाइट या ऐसे जो ज़राए इब्लाग हैं उनको फिर और शय मिलती है और वो फिर दूसरों के खिलाफ़ भी जो है ऐसी खबरें शाया करते हैं।
0: देखिए, इसमें आपने बड़ा अहम पहलू बताया सिकंदर साहब के हवाले से कि उन्होंने क्या कहा है
1: जी।
0: अगर वो महज ये समझते हैं कि ये एक बेहुदा सी वेबसाइट है और इसमें ये लिखा जाना जो है ये कोई दुखद नहीं लगता, तो वो फिर किस बात के खिलाफ जद्दोजहद कर रहे हैं? उनकी सारी जद्दोजहद का मरकज और मेमोरी यही है कि ऐसे लोगों का मुंह बंद किया जाए जो मुसलमानों के खिलाफ और पाकिस्तानियों के खिलाफ या बहसीत मजबूरी सभी तरह के वतन के खिलाफ इस तरह की जहर अफशानी करते रहते हैं। अगर वो ये नहीं कर सकते उस अखबार को या उस वेबसाइट को ये नहीं कह सकते, तो फिर उनकी जद्दोजहद जो है वो सारी किधर गई? क्योंकि यहाँ जन्नत में आप खुद देखते हैं
1: जी जी।
0: कि इसी तरह के नाम नहाद अखबार जो है और जो सोशल मीडिया है वो हम मुसलमानों पर किस तरह के इल्जाम लगाता है और हमारी किस तरह से तोहीन का कोई पहलू जो है वो हाथ से नहीं जाने देता। तो मेरे ख्याल में सिकंदर साहब को ये चाहिए कि कम अज कम इस अखबार को एक नोटिस दें अपनी तरफ से, इस वेबसाइट को, कि ये तुमने क्या किया है और ये इल्जाम जो है ये बेबुनियाद है।
1: आपको याद होगा आज से 30 साल पहले एक्स्ट्रा ब्लाले ने मेरे ख़िलाफ़ एक कंपेन शुरू की थी, तो मैं तो उनको कोर्ट में ले गया था और उनको माफ़ी मांगनी पड़ी अपने अखबार के अंदर, उन्होंने कहा कि हमसे गलती हुई है। तो आपने बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बताया कि अगर वो शख्स जो हमेशा गैर मुल्कियों की हकूक़ की बात करते हैं, जो उन पर जो रेसिज़म होती है उसके खिलाफ जद्दोजहद करते हैं, تو اگر ان کے اوپر کوئی اس قسم کے بہودہ الزام لگا جائیں تو ان کو بھی جو ہے اس کا نوٹس لینا چاہیے. چلیے ہم نے اپنا فرض ادا کر دی, اب دیکھیں.

आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 3321 2984। ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम वतन

मिट्टी का जिस्म है, मिट्टी की जान है, फिर भी बशर को कितना गुमान है। ए इंसान, तू इस दुनिया की रंगीनियों में खो गया, मौत को भूल बैठा, गफलत में सो गया। याद रख, ये सांसें अमानत है, तेरी जागीर नहीं, कफन में जेब नहीं होती, और

जमात पी एम एल एन से है या उनके वो करीब समझे जाते हैं या एस्टैब्लिशमेंट के करीब समझे जाते हैं, वो खुलम खुला इल्जाम लगा रहे हैं कि जितने भी हैं ज्वाइंट एक्शन कमेटी वाले ये सब के सब हिंदुस्तान के साथ मिले हुए हैं, जो कुछ भी वहां पर इनके मुतालबात हैं बकवास है, इनका कोई मुतालबा नहीं है, कोई इसकी जस्टिफिकेशन नहीं है और ये सारी की सारी डिस्टर्बेंस जो है ये हिंदुस्तान करवा रहा है। मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि हिंदुस्तान आज तक पेनिट्रेट नहीं कर सका आज़ाद जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स में, अलबत्त जो गलतियां अभी की जा रही हैं इसमें बहुत ज्यादा खतरा है कि एक तो उनका इंटरेस्ट इसमें डेवलप करेगा, वो देखेंगे कि पोटेंशियल अपॉर्चुनिटी है, और फिर अगर यहां ज्यादा डिस्टर्बेंस होती है, यहां एक जख्म लगते हैं तो हिंदुस्तान को यहां की पॉलिटिक्स में पेनिट्रेट करने का मौका मिलेगा, यानी इस पॉइंट के ऑनवर्ड्स उनका हमने रास्ता खासा जो है हमवार कर दिया। अरेस्ट हम पहले ही 24 घंटे पहले था कि 72 हुए हैं, उसके बाद भी बहुत से अरेस्ट हुए हैं, कोई टोटल फिगर नहीं है, लेकिन आप आसानी से कह सकते हैं कि 100 से बहुत ज्यादा लोग जो है वो अरेस्ट हो चुके हैं, एक आदमी की हलाकत हो चुकी है। और लेकिन जो इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि शौकत नवाज मीर साहब जो हैं वो अभी तक आज़ाद हैं अपेरेंटली, और मसलसल जो डिमांड आ रही है कि जो रैली है जो जो इसे कहते हैं पहिया जाम हड़ताल होनी है 9 तारीख की, वो कंटिन्यू करेगी, हम पीसफुल मुजाहरा करेंगे, हमें वायलेंस नहीं करनी, हमने असला जो है वो नहीं लेके आना, बेसिकली तौर पर गांधीयन प्रिंसिपल जो महात्मा गांधी ने प्रिंसिपल कहा था नॉन वायलेंस मूवमेंट का, जब वो ये कहते थे कि जो बरतानवी साम्राज्य है उसके पास कोएर्सिव एपरेटस है पुलिस और फौज का, अगर लोग उसके खिलाफ तशद्दुद का रास्ता इख्तियार करेंगे, हथियार उठाएंगे, बंदूक उठाएंगे, गोली चलाएंगे, तो फिर ब्रिटिश एम्पायर या ब्रिटिश इंपीरियल ऑर्डर जो है वो बड़ी सख्ती से उसे रिस्पॉन्ड करेगा। यही वजह थी कि जब वो खिलाफत मूवमेंट के साथ मिलकर कांग्रेस तहरीक चला रही थी 1922 में, और चौरी चौरा का इंसिडेंट हुआ था जब हजूम ने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी जिसमें 22 पुलिस वाले जल के हलाक हो गए थे, तो गांधी जी ने फौरी तौर पे अपनी जो मूवमेंट थी उसे कॉल कर लिया था, उन्होंने ख़त्म कर दिया था। उस वक्त जो मुस्लिम लीडरशिप थी वो बहुत नाराज़ हुई कि गांधी जी जो है वो शायद अंग्रेज से मिले हुए, लेकिन गांधी का परस्पेक्टिव बड़ा क्लियर था कि आपने अंग्रेज साम्राज्य को ताकत का इस्तेमाल करने का मौका नहीं देना। अलबत्त आज़ाद कश्मीर में प्रॉब्लम यह है कि ऑलरेडी जिस किस्म के इकदाम किए गए मैं समझता हूँ बिल्कुल गैर ज़रूरी थे, इसी चीज को इन्होंने बात को पतंगड़ इन्होंने बना दिया है और इन्होंने एक स्टेज सेट कर दी है वायलेंस की। अल्लाह करे कि मेरा ये एनालिसिस जो है ये गलत साबित हो, वायलेंस ना हो, कोई यहां पे हल निकल आए। अब इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए कि आज़ाद कश्मीर के जो प्रेसिडेंट हैं उन्होंने आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट में एक रेफरेंस फाइल किया था, बड़ा लिमिटेड उसकी रिमिट है उस रेफरेंस की, उस रेफरेंस को सुना गया है, एक 2 मेंबर जुडिशियल टीम थी, 2 जज साहिबान जिनको लीड कर रहे थे आज़ाद कश्मीर के चीफ जस्टिस जनाब राजा सईद अख्तर खान साहब, उनके सामने बहुत से एक्सपर्ट्स पेश हुए, बहुत से वकला पेश हुए, कुछ पॉलिटिशियन पेश हुए जिन्होंने अपने अपने दलाइल दिए। राजा सईद अख्तर खान साहब बहुत अच्छे आदमी हैं, लेकिन उनको खुद भी याद होगा कि एक ज़माने में मेरिट पर उनको चीफ जस्टिस बनना था, लेकिन भाई लोग उनसे ऐसे नाराज हुए थे मुजफ्फराबाद में कि उनको चीफ जस्टिस ही नहीं बनने दे रहे थे जिस जमाने में फरोख नसीम साहब लॉ मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, तो उस जमाने की मैं बात कर रहा हूँ। बहरहाल राजा सईद अख्तर साहब जाहिर है उनके सामने जो रिमिट है, एक तो जाहिर उनको पता है कि भाई लोगों के खिलाफ ऐसा नहीं करना, दूसरा यह कि जो रेफरेंस में उनके सामने रिमिट या सवाल है वो भी बड़ा स्पेसिफिक किस्म का है। सवाल यह है कि क्या आज़ाद कश्मीर की असेंबली बगैर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के ये जो 12 सीटों का मसला है इसके बारे में कोई फैसला कर सकती है। अब यहाँ दूसरा प्रॉब्लम यह है कि आजाद कश्मीर के जो प्राइम मिनिस्टर हैं जनाब फैसल राठौर साहब, वो ऑलरेडी जब उन्होंने ऑल पार्टी कॉन्फ्रेंस एपीसी बुलाई थी तो उस एपीसी ने ये 12 सीटों का जो मामला है जो कि जॉइंट एक्शन कमेटी कहती है कि इनको खत्म हो जाना चाहिए या इनको सेरेमोनियल कर दें, इसके हवाले से उन्होंने उस मुतालबे को बिल्कुल भी रद्द कर दिया था। तो आजाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट ने यह सारी प्रोसीडिंग सुनने के बाद अपने फैसले को महफूज कर लिया, लेकिन मेरा ख्याल है कि वो कोई मौसर फैसला शायद नहीं कर सकेंगे, या वो देखेंगे कि भाई लोग क्या चाहते हैं, या वो देखेंगे कि पॉलिटिकल भाई लोग ही देखेंगे कि पॉलिटिकल डायरेक्शन क्या है, यानी कितना एक मसला सड़कों पे खड़ा होता है, अगर सड़कों पे कोई बहुत बड़ा मसला खड़ा हो गया तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट से एक थोड़ा सा पॉजिटिव फैसला भी आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट से आ जाए। जहन रखिए मैंने हमेशा आपको ये कहा कि अदालतें एक सिस्टम के स्ट्रक्चर के अंदर ऑपरेट करती हैं, दुनिया भर की जो सुप्रीम कोर्ट्स हैं इवन हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट जिसको बहुत आज़ाद तसव्वुर किया जाता है या यूरोप की बरतानिया की तमाम ममालिक में ये एक सिस्टम के ढांचे के अंदर ऑपरेट करती हैं, वो शायद इतनी मजबूर नहीं होती जितनी पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट्स होती हैं या आज़ाद कश्मीर की सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन रहती वो भी एक फ्रेमवर्क के अंदर ही है। दुनिया में जब से कोर्ट बनी है जब से अदालत तश्कील पाई है अगर किसी अदालत को मैक्सिमम ऑटोनॉमी आज़ादी और ताकत है तो वो सिर्फ अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट को है। अमेरिकन सुप्रीम कोर्ट ने 19वीं सदी में और 20वीं सदी में बारहा अमेरिका की सियासत को आगे की तरफ एक धक्का दिया है। अमरीका में जो बहुत सी पोलिटिकल प्रोग्रेस हुई है, सोसाइटल प्रोग्रेस हुई है, मीडिया की प्रोग्रेस हुई है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की प्रोग्रेस हुई है, वो इसलिए हुई है कि अमरीकन सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉन्शियसनेस के लेवल पर
ऐसे फैसले किए जिन्होंने अमरीका को आगे बढ़ने का मौका दिया। मगर हैविंग सेड दिस,

0: सिक्योरिटी काउंसिल के जो नॉन वो परमानेंट मेंबर है उनका इंतखाब हुआ और 5 मेंबर्स जो हैं वो जा रहे हैं, जिसमें डेनमार्क और पाकिस्तान भी था 2 साल से। तो उसके लिए मुख्तलिफ इलाकों से मुस्लिम ममालिक जो है वो इलेक्शन में खड़े होते हैं। और पिछले 70 साल से जर्मनी हमेशा जो है वो इस बात में कामयाब हो जाता है कि वो सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर बने। लेकिन इस दफ़ा कुछ ऐसी बात हुई है कि इसराइल के साथ जो उसने सपोर्ट की है उसकी वजह से वो पहली दफ़ा अक़्वाम मुत्तहिदा की ज़िंदगी में जर्मनी जो है उसको शिकस्त हुई है। और वो बजाय इसके कि इस चीज़ का इतराफ़ करें कि हमारी गलत पॉलिसीज की वजह से हमें शिकस्त हुई है, अब वो कह रहे हैं कि तो रशिया ने जो है ये हमें हरवा दिया है अक़्वाम मुत्तहिदा में। लेकिन क्या इन ममालिक के जो लीडर्स हैं उनको समझ नहीं आ रही कि उनकी हरकतों से जो काफ़ी ममालिक जो है उनके खिलाफ हैं?
1: आपने बिल्कुल बजा कहा, इन लोगों को ये अपने करतूतों को तस्लीम करते हुए ये बात माननी पड़ेगी कि
0: जी
1: दूसरी दुनिया के ममालिक जो हैं वो इनसे क्यों नाला है। लेकिन जहाँ ये कहते हैं कि जी ये रूस ने ऐसा कर दिया है, तो फिर इनको ये बात भी वसी और नजरी के तहत काबिल कबूल होनी चाहिए कि रूस जिसका तुमने नाता बनकर रखा है
0: जी,
1: इस पर पूरी यूरोपीय यूनियन और यूरोपीय ममालिक और अमरीका, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत सब ने पाबंदियां लगा रखी हैं, वो तुमसे ज्यादा मुतहरक है आदमी सियासत में, यूनाइटेड नेशन में और सिक्योरिटी काउंसिल में। और ये तस्लीम कर लो कि तुम्हारे तरफ से उसके हाथ पांव काट देने की कोशिशों के बावजूद वो जिंदा है, और सिर्फ जिंदा ही नहीं बल्कि तुम्हारा मुकाबला कर रहा है।
0: बिल्कुल
1: आप देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन के लिहाज से आप देख लीजिए कि बांग्लादेश ने कितनी अहमियत हासिल की है।
0: हाँ जी, जी, जी, जी, जी,
1: दुनिया भर के ममालिक के जितने भी उम्मीदवार सामने आए हुए थे उनमें से बांग्लादेश जो है वो कामयाब हुआ है
0: जी।
1: और बांग्लादेश की भी कामयाबी जो है ये इस बात की दलील भी है कि दुनिया के ममालिक अगर खुल कर नहीं बोलते तो वो अपने इस हक से बखूबी आगाह हैं कि इन लोगों की कार्रवाई करते हुए, इनकी हमायत करते हुए उन्हें कुछ भी नहीं मिल सकता, उन्हें अपने ही जैसे किसी को आगे लाना होगा।
0: अच्छा, जर्मनी के बजाय ममालिक जो उन्होंने ऑस्ट्रिया को जो है वो वोट ज्यादा वोट दिए उन्होंने और उसको कामयाब बना दिया। हाँ जी
1: बिल्कुल मिला था।
0: अच्छा अच्छा नसर साहब,
1: पाकिस्तान और डेनमार्क की जो मुद्दत थी वो तो पूरी हो गई,
0: 31 दिसंबर को खत्म हो गया उनका।
1: क्या 31 दिसंबर को पूरी होगी?
0: जी जी बिल्कुल।
1: और उसके बाद फिर देखिए कि क्या होता है। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान ने यूनाइटेड नेशन में और सिक्योरिटी काउंसिल में अपना किरदार जिस तरह अदा किया है
0: बहुत खूब, बहुत खूब।
1: उस पर डेनमार्क ने भी उसका साथ देते हुए कहा है
0: जी।
1: इन दोनों की वहाँ पर मौजूदगी कई ऐसे मसाइल की तरफ तवज्जो भी दिलवा सकती है और उसके हाथ के लिए इकदाम पर आमादगी भी हासिल की जा चुकी है जिनका कोई जिक्र नहीं करना चाहता
0: था। अच्छा, एक और ख़बर आई है लेबनान से, क्योंकि हम जब वेस्टर्न मीडिया में पढ़ते हैं कि जी इसराइल वहाँ पे बम्बार्डमेंट कर रहा है और बेरूत पे हमले कर रहा है, ये तो हम देखते हैं, लेकिन जो दूसरी तरफ जो हिजबुल्ला ने जो अभी नई पॉलिसी बनाई, उन्होंने एक नया ड्रोन बनाया, छोटा सा, बिल्कुल 1-2 फुट का, उसके ऊपर कैमरा लगाया हुआ है और वो कैमरा जो है वो जब ड्रोन जाता है तो वो सारे इसराइली टैंक्स वगैरह या उनकी बड़े बड़े बख्तरबंद गाड़ियाँ जो ना वो साफ नज़र जाती हैं, तो उस पर फिर वो हमला करते हैं। तो कहा जाता है कि इसराइल का बहुत नुकसान हुआ है वहाँ पर, लेकिन वो बताते नहीं हैं और इसी वजह से नतन्याहू को जो है वो ट्रंप साहब ने भी गुस्से में कहा कि तुम क्या क्या हरकतें कर रहे हो, बंद करो इस बात को। तो ये जो जंग है लेबनान में या ईरान के साथ, ये इस तरह तो ख़त्म नहीं होगी जब तक के बैठ के इस मसले को हल ना किया जाए।
1: इस बात पर तो कोई दूसरी राय हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर जंग का अंजाम जो होता है
0: जी
1: वो मुज़ाकरात की मेज पर होता है।
0: दुरुस्त,
1: ये आप भी जानते हैं और हम सभी जानते हैं
0: जी।
1: लेकिन मुज़ाकरात की मेज पर आने से पहले जिस तरह आप या एक पार्टी प्री कैम जितने भी हैं उनमें से एक पार्टी आज रोज نئی شرائط پیش کر دیتی ہیں. اب ان کا یہ کہنا ہے کہ مشاق ابراہیم کو بھی تسلیم
0: ایگزیکٹلی
1: مشاق ابراہیم کو تسلیم کرنے کا مقصد یہ ہوگا کہ تمام مسلمان ممالک جو ہیں وہ اپنی موت کے پروانے پر دستخط کرتے ہیں.
0: جی جی جی جی
1: کیونکہ اس کی کئی شرطیں جو ہیں

0: जब वो ये कहते हैं तो ट्रंप साहब की आंखें खुल जानी चाहिए, ये हम लोग जब वो धमकी दे देते हैं ये डिजिटल बक्ति के सिवा कुछ नहीं है, ये ऐसे ही है जैसे कि शेर आया शेर आया शेर आया। एक दिन अगर शेर ने आने की कोशिश की तो उसको बड़ी जबरदस्त मजामत का सामना करना पड़ेगा। आपने ये भी देखा होगा कि पिछले दिनों बाद यूरोपीय ममालिक में एक रस्म के तौर पर आपने अपने एक दो तीन चार दस दस फौजी भी वहां भेजे थे।
1: जी जी बिल्कुल बिल्कुल।
0: और एक दो यूरोपीय ममालिक जो है वो वहां पर अपना कॉन्सुलेट भी खोल रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है ये डेनमार्क के मौकफ को जो तकलीफ पहुंचाती है और डेनमार्क का जो असली मौकफ है वो अमेरिका को रोकता है कि वो ऐसे एकदम से बाज रहे।
1: अच्छा नसर भाई, सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के अंदर भी जो है एक बहस चल पड़ी है कि हमारे वज़ीर आज़म जो हैं वो मौका की तलाश में हैं कि वो कोई अच्छी सी पोस्ट मिले तो चली जाएं, तो इसलिए उन्होंने अभी अपना एक नया क्राउन प्रिंस जो है वो चुना है। और उसके बारे में वज़ीर आज़म ने कहा है कि भाई हमारे यहाँ जो इख्तलाफात हैं उसको बैठ के हम हल कर सकते हैं और कोई ज़रूरत नहीं है कि इस चीज़ को मीडिया में डिस्कशन किया जाए। लेकिन साथ ही में बटल हॉडा साहब ने जो है ये कहा कि इस हुकूमत को तुम फिया क्लूवा नहीं कह सकते, जब वो 80 की दिहाई में एक ऐसी हुकूमत थी तो, और उसको कहा कि ये तो एक किस्म की ब्लास्फेमी है कि तुम उस वक्त को गलत नाम दे रही हो। और साथ में मॉडर्न मिसेस स्मिथ, उन्होंने कहा कि मैं वज़ीर आज़म की ज़िंदगी को बहुत तंग कर दूंगा, ये किस्म की उन्होंने धमकी दी है कि मैं पार्लियामेंट में हमेशा उनके ऊपर जो है वो तनकीद करता रहूंगा। तो आने वाले वक्त में जो है प्रॉब्लम तो होगा। और मैं ख़ुद भी जो है कभी भी मैंने मेथे फेडरसन की पॉलिसीज़ को पसंद नहीं किया या हमायत नहीं की, लेकिन उसका मुतबादल जो था वो बहुत ही ख़तरनाक था कि अगर राइट विंग की पार्टियां मिलके हुकूमत बना लेती तो हमारी जो है ना और ख़ासतौर पर नस्ल परस्ती के जो पॉलिसीज़ हैं और मुसलमान दुश्मनी की जो मुसीबत हमें ज़्यादा पड़ जाती सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नस्बत।
0: ये आपने बहुत अच्छी बात की और मुझे इस पर तज्जुब भी हो रहा है कि आपने देखा है कि मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म को हुकूमत को हमारे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब ने मुबारकबाद का पैगाम भेजा।
1: और वो पता क्या कहते हैं, मैंने अपने ब्रदरली मुल्क के वज़ीर आज़म से बात की है।
0: वो पता नहीं किस दुनिया में बसते हैं, कभी चंगा मामा के बाहर निकल कर देखें कि डेनमार्क है क्या।
1: एग्जैक्टली एग्जैक्टली।
0: और जिस तरह से उनके मुबारकबादी पैगाम को तशहीर किया जा रहा है, मुश्तहर किया जा रहा है, वो उसकी मुझे समझ नहीं आई।
1: वेरी ट्रू वेरी ट्रू।
0: किसी और मुल्क की तरफ से इस तरह का कोई पैगाम ना इनको मिला है हुकूमत साजी का। ये सिर्फ मामूली सा मामला है और अंदरूनी मामला है।
1: मैंने अपने जो सफीर साहब हैं उनकी वेबसाइट पे भी ये था तो मैंने वहाँ पे छोटा सा कमेंट दिया कि हमारे जो मोहतरम सफीर हैं पाकिस्तान के डेनमार्क में उनको चाहिए कि वो एक अच्छी सी रिपोर्ट बना के हुकूमत पाकिस्तान को दें ताकि वहाँ पे जब वो बयान देते हैं उनको पता हो कि डेनमार्क में गैर मुल्कियों के साथ मुसलमानों के साथ कैसा सलूक हो रहा है। अब पता नहीं,
0: आपने बड़ा अच्छा मशवरा दिया, मैं इसमें सिर्फ यही अर्ज कर सकता हूँ कि जी, उनको जी। ये रिपोर्ट खुद बनाने की ज़रूरत ही नहीं है इस मौजू पर कि डेनमार्क में तारकीन वतन और खासतौर पर मुसलमानों के मुताबिक और पाकिस्तानियों के मुताबिक
1: जी जी बिल्कुल
0: सरकारी सतह पर क्या रवैया इख्तियार किया जाता है, इसकी तो रिपोर्टें आपकी कई एनजीओ ने बनाई हुई।
1: मैं यही कहने वाला था कि रिपोर्ट रिपोर्टें तो हम दे सकते हैं, कोई बात नहीं।
0: आपकी तंजीम इनार ने ऐसी शानदार और तहकीकी रिपोर्टें बनाई हैं, हमारे जो जिम्मेदार अफराद हैं यहाँ अम्बेसी में वही उठा के अपनी हुकूमत को भेज सकते हैं।
1: बिल्कुल, मैंने यही लिखा है अम्बेसडर साहब को, अगर आप चाहें तो हम आपको एक बड़ी तफसील से यहाँ की पॉलिसीज़ मुख्तलिफ पार्टियों की पॉलिसीज़ के बारे में बता सकते हैं। चलिए, हमारी तो ये ख्वाहिश है कि आने ये जो हुकूमत है मौजूदा कुछ ना कुछ तो बेहतर होगी बजाय इसके कि राइट विंग पार्टियों
0: के। दूसरे हम ये अच्छी तरह समझते हैं कि सबका हुकूमत जो थी जबकि वज़ीर आज़म मौजूदा वज़ीर आज़म थी क्योंकि ये उसी हुकूमत का प्रशंसक है, पाकिस्तान के साथ अपने तल्लुकात कायम करने में और बनाने में वसत देने में बड़ा अच्छा किरदार अदा किया।
1: बिल्कुल,
0: ये बात प्रमोश नहीं की जा सकती।
1: जी जी बिल्कुल।
0: इन सब बातों के बावजूद हमारे वज़ीर आज़म का इस बात इसको मुबारकबाद का पैगाम भेजना ठीक है, समाज में ऐसा होता है,
1: सफारती तौर पे तो ठीक है, लेकिन यह कि उनको पता होना चाहिए कि यहाँ पे हो क्या रहा है।
0: आर्मी सतह पर ये चीजें जो है होती हैं और होनी चाहिए।
1: जी जी,
0: उनका ये इकदाम जो है मुबारकबाद का, ये काबिल सिफारिश है।
1: जी,
0: लेकिन सुनना, देखना ये चाहिए कि इस पैगाम के जरिए वो कौन सा तीर मार रहे हैं जो यहाँ रहने वाले उनके हमवतनों के लिए फायदेमंद होगा।
1: एग्जैक्टली, बिल्कुल। और इसी खूबसूरत जो बात के साथ हम
0: अपना, हाँ, एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ,
1: प्लीज
0: ये याद रखिएगा कि रेडियो हमवतन के बानी हम सब के मोहसिन और मेहरबान जनाब हाजी गुलाम मुस्तफा साहब का चेयरम आ रहा है, उसके लिए उनकी दुआएं मकसद के लिए मदनी मस्जिद में एक खास इस्तेमाल किया जा रहा है
1: जुमे के रोज,
0: शायद रजाबाई मजीद तस्वीर बता रहे हैं।
1: जी जी,
0: वहाँ पर मैं दरख्वास्त करूंगा अपने सब हम वतनों से कि जहाँ तक मुमकिन हो वहाँ जरूर तशरीफ लाएं और चिल्ला हाजी साहब की मौकत के लिए दुआ फरमाएं।
1: बहुत खूब, बहुत बहुत शुक्रिया नसर भाई कि आपने वक्त दिया, अपना कीमती वक्त दिया। रजा भाई, वो डेट बता दें कि कब है हाजी साहब की के लिए जो।
2: जी बादशाह साहब, बहुत शुक्रिया। ये अगले हफ्ते वाले दिन 13 जून को 2 बजे वेस्टर्न मस्जिद
1: मक्की मस्जिद में,
2: जी
1: मस्जिद में, जी
2: वहाँ पे जो है उनके असाल सवाब के लिए जो है मदनी मस्जिद की तरफ से जो है ये और हमारे साथ मिलके जो है ये एहतमाम इस महफिल का किया गया।
1: बहुत खूब। सामिन और नाजरीन, ये था आज का हमारा प्रोग्राम, और जो लोग कोपेनहेगन में और उसके इर्द गिर्द रहते हैं उनसे भी हमारी ये दरख्वास्त है कि वो हफ्ते के रोज़ 2 बजे मस्जिद में आ जाएं और वहाँ पे हाजी साहब की जो रूह के लिए उनके सवाब के लिए दुआ करें। तो अगले हफ्ते तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद।
3: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@hamvatan.org।

0: بسم اللہ الرحمن الرحیم. ظفر شیخ حسب معمول بہت دنوں کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ریڈیو ہم وطن اور نئی دنیا کے پلیٹ فارم سے. ایک تو پروفیشنل ذمہ داریوں کی وجہ سے پروگرام تھوڑا تاخیر سے کر رہا ہوں, اس کے لیے معذرت. اور آج کا پروگرام امید کرتا ہوں کہ بہت ہی اچھا ہوگا, انفارمیٹیو ہوگا, کیونکہ آج کے پروگرام میں ایک ایسی شخصیت جن کو آپ لوگ بہت بھی جانتے ہیں, سیاسی حوالے سے بھی, سماجی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی, میری مراد جو کہ سید توقیر حسن بخاری صاحب ہیں, تھنک ٹینک ہیں اور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہیں اور پرومیننٹ شخصیت ہیں. تو ان کے گفتار اور کردار کے حوالے سے آپ بہت بھی جانتے ہیں, بہت اچھے طریقے سے اپنی ذمہ داریوں کو آپ لوگوں کے سامنے خدمات کی صورت میں پیش کر رہے ہیں. تو آج کے پروگرام میں ہمارے مختلف موضوعات پر بات چیت ہوگی. تو میں یہ چاہوں گا کہ آپ حسب معمول جس طرح ہمارا پروگرام دیکھتے اور سنتے ہیں, اسی طرح آج کا پروگرام بھی آپ دیکھیں اور سنیں, اور اس میں بہت ساری انفارمیشن ہوگی پاکستان کے حوالے سے, بین الاقوامی حوالے سے, اور خاص طور پر ڈنمارک کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ان سے بات چیت کریں گے. اور سب سے پہلے تو میں جو تاخیر سے یہاں پروگرام شروع کر رہا ہوں, اس کے لیے رضا مصفیٰ صاحب سے بھی معذرت خواہ ہوں, کیونکہ انہوں نے پروگرام, حاجی مصفیٰ صاحب جو کہ اس وقت اللہ پاک کے پاس موجود ہیں, ان کے پروگرامز میں میں شامل نہیں ہو سکا کچھ وجوہات کی وجہ سے, جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں. لیکن حاجی مصفیٰ صاحب کا کردار, ان کی گفتار کے حوالے سے اگر میں یہ عرض کرنا چاہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہت اچھا اپنی زندگی کو کے سلسلے کو چلایا, اور خاص طور پر لوکل میڈیا کے حوالے سے ڈنمارک میں جو ان کی خدمات ہیں, بانی ریڈیو ہم وطن ہیں, جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رہتی دنیا تک قائم دام رہے گا, اور ان کی وجہ سے ہی ہمارے اندر یا نئے آنے والوں کے اندر یہ حوصلہ پیدا ہوا کہ یہاں لوکل میڈیا کو اور میڈیا کو اچھے طریقے سے لوگوں کے مسائل کے حوالے سے ان کے سامنے پیش کیا جائے. تو شاہ صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ دوبارہ آپ نے مجھے یہ موقع فراہم کیا, اور یہ میری خوش قسمتی ہے کہ جب بھی میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں تو آپ میری درخواست کو قبول کرتے ہیں, اس کے لیے بہت بہت شکریہ آپ کا. اور جیسا میں نے انٹرو میں یہ عرض کیا کہ آج کا پروگرام مختلف موضوعات پر ہوگا, تو سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ چند الفاظ حاجی مصطفیٰ صاحب مرحوم کے حوالے سے اگر آپ فرمانا چاہیں, تو اس کے بعد پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں.
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم. شیخ صاحب,
2: حاجی مصطفیٰ, میں ان کو محروم نہیں کہوں گا. محروم وہ ہوتے ہیں کہ جن کو آدمی بھول جاتا ہے, انسان بھول جاتا ہے. وہ ہمیں زندہ رکھتے تھے, ہمیں تعلیم کے اعتبار سے بھی, انفارمیشن کے اعتبار سے بھی, بچوں کو قرآن شریف اور سپاروں کا درس دینا, مساجد کی خدمات کرنا. وہ ایسی شخصیت ہیں کہ جو بڑھ چڑھ کے ڈنمارک کی ٹاپ شخصیات میں ان کا نام آتا ہے.
0: جی,
2: اور میں ان کو معروم اس لیے نہیں کہوں گا کہ جب آپ, اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ فرمایا ہے کہ آپ کو شعور ہی نہیں کہ جو انسان میرے رستے پہ چلتا ہے یا میرے رستے پہ شہید ہوتا ہے یا دنیا سے اس رستے سے چلا جاتا ہے تو وہ شہید ہوتا ہے, اس کو میں رزق دیتا ہوں.
0: ٹھیک,
2: اب ہمارے اختلافات ایک جگہ, لیکن اگر ہم اس کو جیسے ڈنمارک میں ڈینش میں کہتے ہیں کنڈلی, یعنی کہ ہم ان کی زندگی کو کا نچوڑ نکالیں اور ان کی بیک گراؤنڈ دیکھیں, تو یہ ادارہ جس کے اندر میں آج بیٹھا ہوا ہوں, یہ فرسٹ میڈیا جو تھا, میں لوگوں کو یہ بتا دوں کہ یہاں پہ جو رسالے نکلتے تھے, اخبار نکلتے تھے, وہ ٹھیک تھے, وہ ماسٹر وقار یا چودھری امانت وہ نکالتے تھے, لیکن سب سے پہلا جو ریڈیو کا پروگرام ہوا,
0: جی جی,
2: وہ حاجی مصطفیٰ صاحب نے نکالا.
0: بالکل,
2: اور یہاں پہ انہوں نے ہر ویکینڈ پہ اس ریڈیو سے پروگراموں کو نشر کیا. یہاں پہ بچوں کے پروگرام ہوئے, بچوں کی تلاوتیں ہوئیں, بچوں کو انعامات دیے گئے, بچوں کی حوصلہ افزائی کی گئی, और इस तरीके से माँ बाप की भी हौसला अफजाई की गई कि आप अपने बच्चों को तैयार करें दीनी तौर पे और उनको हम अपने रेडियो पे लेके आएंगे, यहाँ पे मुकाबलाबाजी होगी, जो जीतेगा हम उसको इनाम देंगे और जो नहीं जीतेगा उसको भी उसकी भी हौसला अफजाई होगी ताकि अगली दफ़ा वो। तो हाजी गुलाम मुस्तफ़ा साहब को हमेशा रेडियो जो है ये वेस्टर्न रेडियो जो है इसके ऊपर और हम वतन रेडियो जो है इसके नाम से जब भी इसका नाम बोलेगा तो हम उनको याद करेंगे और उनको याद करते रहना चाहिए।
0: उशा साहब, जैसा आपने फरमाया कि कोई भी इंसान जिस पे अल्लाह ताला की तरफ से कोई ज़िम्मेदारी आयद होती है और वो ज़िम्मेदारी जो कि इंफरादी और इज्तमाही तौर पर बड़ी लोगों के लिए मौसर साबित होती है, अगर वो खिदमात या वो ज़िम्मेदारी उनके जाने के बाद भी पीछे वाले लोग जो निभा रहे हैं तो मैं समझता हूँ सदका जारिया उनके लिए भी ये बन जाता है, अल्लाह ताला ये
2: बिल्कुल देता है। दो किस्म की चीज़ें होती हैं, एक होता है शैतानी अमाल, आप शैतानी अमल करते हैं, लोगों को तंग करते हैं, लोगों के रास्ते में रोड़े अकटाते हैं, आप लोगों को के साथ मिसबिहेव करते हैं
0: जी।
2: तो वो एक अलहदा है, लेकिन जो इंसान अपने पास से अपना वक्त से ज़्यादा वक्त निकाल के अपने ख़ानदान अपनी फैमिली को एक साइड पर रख के और ख़िदमत खल्क करता है
0: जी,
2: उनकी बात जो है उनमें जो लोग शामिल हैं उनमें सरफ़रिस्त डेनमार्क के अंदर जिन लोगों का नाम आता है उनमें टॉप में हाजी मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा साहब का नाम आता है। तो इसलिए हमें ये दो राय कायम नहीं करनी चाहिए और अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फ़िरदौस आला में जगह अता फरमाए और हमारी दुआएं हैं। और जब भी आप अमेरिका वाय मस्जिद में जाएं या आप इस रेडियो का नाम सुनेंगे तो उसकी बुनियाद जो रखी है और बुनियादों में रखने वालों में तो हाजी मुस्तफ़ा साहब का नाम ज़रूर आएगा
0: जी। बिल्कुल ऐसे ही चले जी, हमारी दिल से ये दुआ है कि अल्लाह ताला उनको अपने जवार रहमत में जगह दे और हमें अपने दिल से उनके लिए दुआ गो हैं कि वो जहाँ भी रहें अल्लाह ताला के फजल करम के साए के थले रहें। तो ऐसे ही बस ज़िंदगी का सिलसिला है, उन्होंने अपना जितना वक्त गुजारना था गुजार लिया और उसके बाद फिर हमारा ये फ़र्ज़ है, ये ज़िम्मेदारी है कि हम उनकी इन खिदमात को आगे किस तरीके से लेकर जाते हैं और इंशाल्लाह ताला मुस्बत तरीके से लेकर जाएंगे। शाह साहब, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं और जैसा मैंने इंट्रो में ये बताया कि आज मुख्तलिफ मौजूआत पर हमारी बातचीत होगी, शाह साहब सबसे पहले तो ये बताएँ कि इस वक्त डेनमार्क की सियासी सूरत हाल और उसके बाद थोड़ा सा समाजी और कारोबारी हालात के हवाले से भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले इस वक्त जो कोर इशू है सियासी सूरत हाल जो इस वक्त 69 दिनों के बाद 69 दिनों के बाद शायद ये हुकूमत तीसरी दफ़ा हमारी जो वज़ीर आज़म वो
2: गिरती गिरती बनी है
0: जो भी अच्छा इसके हवाले से थोड़ा बताएँ। और दूसरा ये बताएँ कि इस सारी सूरत हाल में ये जितनी पार्टी उनके साथ हलीफ के तौर पर शामिल हैं इनका कैसा किरदार रहा?
2: देखिए जी, सबसे पहले तो यह है कि मैं हमेशा वो बात करूंगा जो लोगों को समझ आए और सियासतदानों के लिए भी और आम आवाम के लिए भी। चार पार्टियां ऐसी हैं जिन्होंने फॉरनर से उनकी बेहतरी के लिए वोट मांगे,
0: ठीक है,
2: उनमें एसएफ सरफ़रिस्ती, इनिस लिस्टन सरफ़रिस्ती, रेडिकल वेंट्रा सरफ़रिस्ती और अल्टरनेटिव थे।
0: अच्छा,
2: लेकिन अल्टरनेटिव के अंदर भी दो राय पाई जाती थी, लिहाजा कुछ हमायत में थी और कुछ फॉरनर्स मुखालफत में भी थी। अब सोशल डेमोक्रेट जो है ये ब्लू ब्लॉक के साथ मुकाबला कर रही थी, ये डेंथ फलके पार्टी और इंगा स्टॉयबेयर के मुकाबले की ये लीडर है और इसने सबसे ज़्यादा जो कवानीन हैं उनको ज़िंदा रखा, जो इंगा स्टॉयबेयर ने वेंस्ट्रा के साथ मिलकर जब वो वेंस्ट्रा की थी अपना मिनिस्टर तो लार्स ल्यूके उस वक्त स्टेट मिनिस्टर थे, तो इन्होंने लार्स ल्यूके के ज़ेर साया ये सारे कवानीन बनाए जो कि कॉन्स्टिट्यूशन जिसको हम डेनिश में कहते हैं ग्रून लॉ के एंगेस्ट बने, ये ह्यूमन राइट्स के एंगेस्ट बने, ये सारे के सारे 117 या 118 कानून जो थे ये बने। लेकिन मैं आवाम को एक चीज़ बताता जाऊं कि हमारे सियासतदानों को इस चीज़ का शऊर नहीं था कि ये जब हम कानून बना रहे हैं तो इसके इन कानूनों की जद में, ये कानून जो हैं इनकी जद में खुद डेनिश सिटीजन्स जो हैं वो आ जाएंगे। डेनिश सिटीजन्स का मतलब यह है कि वो फॉरनर्स, जैसे कि मैं डेनिश सिटीज़न हूँ, आप भी डेनिश सिटीज़न हैं, लेकिन वो डेनिश जो कि ख़ानदानी तौर पे यहाँ के डेनिश हैं, बॉर्न भी और उनकी फैमिलीज और फैमिली दर फैमिली यहाँ के रहने वाली है, उनके राइट्स भी जो हैं वो मजरूह हुए और इन्होंने काफ़ी कानून बनाए। और इसके ऊपर बात करने के लिए कोई ऐसा हमारे पास ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, हम खसूसी तौर पे पाकिस्तानियों के पास कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं कि जो इस इनके ऊपर बात करें। तो ये चीज़ें जो हैं, अब जो आपने कहा 69 डेज में ये बनी, देखें पहले ये लास्ट लुक गया तो जो SF और दूसरी पार्टी थी उन्होंने कहा कि अगर आपने रेड ब्लॉक में आना है तो ये जो बनेगी हुकूमत इसमें हमारी ज़्यादा सुनी जाए। फिर उसके बाद लास्ट लुक जो था वो चला गया, गेंद जो है वो चला गया ब्लू ब्लॉक के पास। ब्लू ब्लॉक जो है वो इसी बात पे अड़े रहे कि भाई हमने तो जो कानून हैं उनको हद से ज़्यादा सख्त करना और उन पे एप्रीमेंट करना है,
0: ठीक है,
2: यानी जो क्रिमिनल्स हैं हमको निकालना चाहिए, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए। तो सोशल डेमोक्रेट ने कहा कि हमने तो ये ऑलरेडी कानून जो हैं, जब हम PDM की गवर्नमेंट थी हमारे पास सोशल डेमोक्रेट और वेंस्टर और मॉडरेट की हुकूमत थी, तो हमारे जो सपोर्टर्स थे वो यही थे, ऐसा वगैरह दूसरी पार्टियाँ, तो उस वक्त हमने जो कानून बनाए थे और ब्लू ब्लॉक के साथ मिलके, तो वो सख्तियाँ तो हमने बरकरार रखी। आपको पता है कि इन्होंने क्या किया, इन्होंने पिछले साल एक फ्लूटरिंग कैंप और जेल बनाई कोसोवो, या वहाँ पे इन्होंने जेल बनाई, वह यहाँ से उनको अमला जो है वो प्रोवाइड किया गया। अब जो लोग यहाँ पे जिनके केस है या फ्लूटरिंग है या कोई प्रॉब्लम करता है जिनको ये डिपोर्ट कर देते हैं या उनके लंबे केस हैं उनको ये वहाँ भेज देंगे, उससे ये क्या होगा कि एक इंसानियत सोज मसला मरहला शुरू हो जाएगा, यानी कि जो फैमिलीज यहाँ रह रही हैं अगर उनके बच्चे या वो कोई उधर चले जाते हैं तो उनके जो रबते हैं वो बरकरार नहीं रहेंगे, ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्दी होगी। और यहाँ पे जो डेनिश उससे ज़्यादा बड़ा क्राइम कर रहा है उसको जो राइट्स हैं वो डेनमार्क के अंदर मिल रहे हैं, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन ग्रून लॉ ऑफ डेनमार्क की बहुत बड़ी वायलेशन है। और ये ऐसी वायलेशन है कि जैसे कि आप गाजा में देख रहे हैं जो कुछ हो रहा है, ये बिल्कुल उसी तरह के कानून जो हैं यहाँ पे लागू करके तो इस गवर्नमेंट ने जो है वो बरकरार रखे। और अब भी मुझे यही लगता है कि जो इनका मुआहदे हुए हैं इन पार्टियों के गवर्नमेंट के अंदर जो पार्टीज आई हैं उनमें से सिर्फ दो चीज़ें जो हैं वो इन इस लिस्ट की वाजिया हुई हैं, और वो ये वाजिया हुई हैं कि ये जो है स्कूल के जो बच्चे हैं 22 साल तक उनके लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा सहूलत मैसर करेंगे, बसें ट्रांसपोर्ट वगैरह उनके लिए फ्री होगी, और दूसरा ये है कि ये जो पार्किंग वगैरह का मसला है इसके ऊपर कोपनहेगन को ज़्यादा से ज़्यादा बंद किया जाए, क्योंकि ये कम्युनिस्ट जो हैं ये साइकिलिस्ट हैं और ये साइकिल पे जाना चाहते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमें क्या इससे, ये तो अच्छा, इनकी अपनी बात है।
0: तो शाह साहब चले ये तो कुछ ठीक है बुनियादी मसाइल ये भी हैं, लेकिन इसके साथ जो मेन इशू हमारे हैं यहाँ काम की परमिशन और प्लस फैमिली यूनिफिकेशन फैमिली सामफुन, इस हवाले से कोई पेश रफ्त हुई है, इन पार्टियों ने कुछ
2: शेख साहब
0: वादा किए हैं?
2: शेख साहब
0: जी
2: वो वही हैं,
0: अच्छा,
2: ना उनको किसी पार्टी ने आगे करना ना पीछे करना, आप ये देखें कि जब मैं ये कह रहा हूँ कि डेनमार्क के कॉन्स्टिट्यूशन, देखें मैं आपको पहले ये समझाऊं कि ग्रून लॉ क्या है और कानून क्या है।
0: माजरत टाइम ज़रा थोड़ा, मैं चाहूँगा कि बाकी मौजूदात पर भी हम गुफ्तगू करें। इन शॉर्ट मुझे ये बताएं कि ये पार्टियाँ, चार पार्टियाँ ना इनके साथ अभी,
2: ये अभी जो जो उलेनिंग और जो फॉरनर्स का जो मिनिस्टर बने हैं
0: जी जी
2: मार्टिन बुस्को,
0: हाँ जी,
2: वो नरम दिल इंसान तो ज़रूर है, लेकिन क्या दूसरी पार्टीज जो हैं वो इनके ऊपर प्रेशराइज करेंगी कि भाई आप इनको आएँ?
0: अच्छा।
2: क्योंकि आप ये देखेंगे फरगत सिंह के अंदर जो फोरमैन बैठे हुए हैं या नेस्ट फोरमैन जो स्पीकर्स हैं जिनको हम कहते हैं, वो बैठे हुए हैं, वो किस कानून को मंजूर करते हैं, किस कानून को आगे लाना चाहते हैं, क्या ये पुराने बनाए हुए जितने भी कवानीन हैं इनको डिमोलिश कराने की कोशिश करेंगे, इनको ख़त्म? तो मुझे नहीं लगता कि ये करें जब के अफवाह की तरफ से प्रेशर नहीं आएगा। और हम लोग जो हैं पाकिस्तानी और दूसरी जो हमारी तंजीमें यहाँ DMU DMC और दूसरी अगली, मेरा ख्याल में कि इनके पास, मैं ये नहीं कहता कि वो डैनिश नहीं बोलते, बड़ी अच्छी डैनिश बोलते हैं, यहाँ पढ़े मुझसे भी अच्छी बोलते हैं, लेकिन उनको वो पार्लियामेंटेरियन नहीं है, उनको ये नहीं पता कि हम किस तरीके से गवर्नमेंट को ट्रिकल करेंगे। क्योंकि यहाँ पे सबसे पहले ये जो चीज़ें हैं ये हमें किसी पार्टी के फोरमैन से बात करें तो वो यही है कि बैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है। अगर किसी मिनिस्टर के साथ बात करेंगे तो वो भी यही हिसाब है। ये किसके सामने बात होनी चाहिए कि जो इनके मुख्तलिफ उज़्वर हैं, जो इनके स्पोक पर्सन हैं, हमें उनसे बात करनी चाहिए और बताना चाहिए कि कौन कौन सी चीज़ जो है वो आप गैर कानूनी कर रहे हैं और कौन से कानून आपने बनाए हैं वो आपके आइन के ख़िलाफ़ है। तो इस पर जो है अगर मेजॉरिटी फॉरनर्स अग्री कर जाएं तो ये कानून जो इन्होंने बनाए हुए हैं, क्योंकि खुद डैनिश महसूस कर रहे हैं हमारे लिए ख़तरनाक हैं, तो ये इसके ऊपर काम हो सकता है।
0: जैसा आपने फरमाया कि ये क्या कहते हैं हमारे जो अवाम इसमें दिलचस्पी जाहिर करें या जिम्मेदारी को समझते हुए आगे, और वो इनको इंसिस्ट करें जो हमारे इलेक्टेड काउंसलर हुए हैं या बाकी जो सियासत के साथ मुंसलिक लोग हैं कि वो अपनी आवाज़ को उठाएं, लेकिन इसके साथ साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी के साथ बाकी कम्यूनिटी वो कोई अपना किरदार अदा कर रही है इसमें?
2: जी, जो दूसरी कम्युनिटीज़ हैं वो बड़ी मजबूती से इस मुल्क के अंदर
0: वो कर रही हैं,
2: वो कर रही हैं,
0: ये क्यों नहीं उनके साथ?
2: हम लोग ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं अपनी बाउलेंस में, हम इंटरेस्टेड हैं कि हमें पाकिस्तानी सियासत में हिस्सा लें, पाकिस्तान में हमारा नाम हो, पाकिस्तान में हमारी चीज़ें हों। आप ये देखें कि 70 से लेके अब तक हम लोग

0: जो आइन को समझते हैं, जो जिनको पता है किस तरह, तो इंशा अल्लाह अगर लोगों ने इस तरफ एक इस रस्ते को चुन लिया तो वो दिन दूर नहीं कि डेंचों को जो है वो पार्लियामेंट के अंदर इन कानून को ख़त्म करना पड़ेगा।
1: अच्छा, तो आप क्या समझते हैं कि हुकूमत जब ये मुकम्मल जिम्मेदारी संभाल लेगी तो तारकीन वतन के मसाइल में कुछ मैं अगर आपसे पूछना चाहूँ, ये कारोबारी लिहाज से या समाजी हवाले से कुछ मुस्बत असर पड़ेगा?
0: नहीं, ऐसे ही है जैसे है। हो सकता है कि ज़्यादा ज़्यादा प्रेशराइज करे उन फैमिलीज़ को जो इन्होंने कानून बनाए हैं 2023 में और 24 में 25 में, हो सकता है कि उसके ऊपर एग्रीमेंट्स करें और वो जो जिनके कोई बच्चे हादसाती तौर पे क्राइम कर लेते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है तो उनको ये बाहर निकालें। लेकिन अभी एक बड़ा अच्छा रिजल्ट आया यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के अंदर से, जिसको हम हाइस गार्ड कहते हैं, उन्होंने एक फैमिली थी 2016 में मेरे साथ ही, उनको डैनिश नेशनलिटी मिली थी। अच्छा। लेकिन उनको गलत डैनिश नेशनलिटी मिल गई।
1: अच्छा,
0: जब उनको गलत डैनिश नेशनलिटी मिल गई तो उसका इन्होंने कहा तो उसको ब्लॉक कर दिया, तो वो अदालतों में होता था, वो हाइस गार्ड के पास चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कोई बात नहीं है, अब ये इसको नेशनलिटी मिल गई है, अब आपके पास अख्तियार नहीं
1: वापस
0: कि आप वापस ले लें। तो ये एक ऐसा शगुन है, ये एक ऐसी निशानदेही है कि जो इन्होंने नए कानून बनाए हैं 2023 में और 24 में 25 में, अगर हमारे सियासतदान जो हैं इसके ऊपर पब्लिकली और डेंचों को भी अपने कोलीग्स को, मैं ज़्यादा ये कहूँगा कि जो हमारे रेडिकल में बैठे हुए हैं, सोशल डेमोक्रेट में बैठे हुए हैं, SF में बैठे हुए हैं, बहुत सारे हमारे कोलीग, वो अपनी बॉलेंस के अंदर मुख्तलिफ डिबेट्स कराएं।
1: अच्छा।
0: और उनके अंदर जो ये मसाइल हैं उनके अंदर वो रखें, या वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तानी हों और वहाँ पे डैनिश भी हों और उनको पता लगे कि ये मसाइल जो हैं ये ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ हैं, तो ये चेंज हो सकता है।
1: तो शाह साहब, ये मौजूदा हुकूमत या ये जो बनी है या आगे चलेगी, तो आप क्या समझते हैं आने वाले दिनों में ये बाकी यूरोपियन ममालिक के साथ या बाकी दुनिया के साथ इनके तल्लुक को अच्छे होंगे, ये अगर सारा सिलसिला तारकीन वतन के लिए कर रहे हैं तो?
0: इस वक्त तो अमेरिका के साथ इनका पटा चल रहा है
1: जी,
0: ग्रीनलैंड का वो जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ले रहा है, क्योंकि उसने सिर्फ ग्रीनलैंड का नहीं कहा बल्कि वो तो आइसलैंड को भी उसने धमकी दे दिया, दुनिया भर को देता फिर रहा है, वो तो एक अलहदा चीज़ है। हमारी गवर्नमेंट को, यहाँ की गवर्नमेंट को ये पता है कि अब मुझे मुस्लिम वर्ल्ड से तल्लुकात रखने हैं, क्योंकि मुस्लिम वर्ल्ड जो है उनमें अब बड़ा इत्तेहाद पैदा हो रहा है और बहुत उसके अंदर जो है सोशल वर्क और दूसरी चीज़ें तंजीमात जो हैं वो काफ़ी उभर के सामने आ रही हैं। तो अब यूरोप को जो है वो मुस्लिम वर्ल्ड के साथ जो है तल्लुकात बेहतर करने पड़ेंगे, तो हो सकता है कि ये हुकूमत चले, क्योंकि सोशल डेमोक्रेट के हमारे जो वज़ीर आज़म हैं इनको आगे चल के सिर्फ ये जो कानून बनाए हैं अगर हम इसके ऊपर बात करना शुरू करते हैं तो इसकी भी प्रॉब्लम है, दूसरा उनको अपनी पार्टी में प्रॉब्लम शुरू हो गई है, उनको ये हो गया कि जो उनके पुराने और तजर्बाकार वजीर थे उनको ये जस्ट नहीं कर सके। आप देखेंगे 11 औरतें बैठी हैं।
1: अच्छा।
0: और 21 अपना 10 जो है वो मर्द बैठे, ये 21 इन्होंने बनाया।
1: अच्छा।
0: अब प्रॉब्लम ये है कि क्या जो नए मिनिस्टरों जिन्होंने नई मिनिस्ट्रियाँ टेक ओवर की हैं उनको कितना टाइम लगेगा कि पूरे कानून को उस मिनिस्ट्री को चलाने के लिए उनको समझने के लिए, इट विल टेक टाइम। और इस दौरान में हो सकता है कि जिस तरीके से सोशल डेमोक्रेट के अंदर अपनी प्रॉब्लम चल रही है ये वहाँ से भी कुछ आदमी आगे पीछे हो जाए, तो ये प्रॉब्लम जो है मैं नहीं कह रहा बल्कि यहाँ के जो तजिया नगार हैं, यहाँ के जो सियासत को समझने वाले राइटर्स हैं वो इस चीज़ का जो है निशानदेही कर रहे हैं कि वाकई ये चीज़ है। यहाँ आप देखें कि यहाँ पे पीने का पानी साफ नहीं है डेनमार्क में, और ये इनको 72 से पता है कि यहाँ पे जो खादें डाली जा रही हैं, यहाँ पे जो केमिकल स्प्रे किया जा रहा है उसकी वजह से पानी कितना गंदा हो चुका है, लोगों को स्टमिक कैंसर्स हो रहे हैं दूसरे। तो ये चीज़ें जो हैं गवर्नमेंट ने हर दफ़ा वादा किया लेकिन गवर्नमेंट अपना वादा पूरा नहीं कर रही, तो उसके ऊपर जो है काफ़ी लेदे हो रही है।

0: सिर्फ स्कूलों को, आप ये देखें कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसे पेरेंट्स हैं जो बच्चों को स्कूल में लेके जाते हैं, तो उनको पर्सनली, क्योंकि उनकी इनकम थोड़ी सी हाई होती है, तो वो पास से पैसे देते हैं, वो बच्चों के बॉन्ड हेमन में या स्कूलों में वो पैसे देते हैं। तो इससे बेहतर यही है कि गवर्नमेंट को चाहिए कि जैसे 70s में था, 80s में था, हर एक के लिए बराबर कर दें। ठीक है, जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वहाँ अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को पढ़ाना चाहता है, पैसे देना चाहता है, तो एक अलहदा चीज़ है अपनी इनकम सोर्स ऑफ इनकम के ऊपर। लेकिन अब ना पेंशनिस्टों के पास इतनी पावर है, बाइंग पावर है, और ना ही बच्चे वालों जो फैमिलीज हैं उनके पास है।
1: अच्छा शाह साहब, जैसा आपने फरमाया कि बाकी कम्युनिटीज़ काफ़ी एक्टिव हैं इन तमाम मसाइल के हवाले से, तो ये क्या कोई अपना आप तजर्बा बताएं कि कैसे हमारी कम्युनिटी और बाकी कम्युनिटीज़, जिसमें मुसलमान कम्युनिटी भी है और दूसरी कम्युनिटीज़ भी हैं, इनको इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म पे करके और इकट्ठा ये आवाज़ उठाएं अपने मसाइल के हवाले से, ये कैसे मुमकिन हो सकता
0: है? देखिए जी, जब तक मैं हमें ख़त्म नहीं होगी, जब तक मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं ही सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ, तो ये गलत बात है। हमें सबको इत्माद में लेना चाहिए, हमें पाकिस्तान की सियासत को अब भूलना चाहिए, हमें ये देखना चाहिए कि यहाँ मोर देन 70% जो हैं वो हमारी ख्वातीन हैं।
1: अच्छा,
0: अब डेनिश ये कहते हैं कि आपकी ख्वातीन जो हैं वो सियासत में नहीं आगे आती, जब आप लोगों की कोई सियासी इजलास होते हैं उसके अंदर आपकी औरतों के ना होने के बराबर है, चंद एक औरतें होती हैं, बाकी आप नहीं लाते। लेकिन जब आप मीना बाज़ार लगाते हैं, ईद बाज़ार लगाते हैं, वहाँ मैंगो बाज़ार लगाते हैं, वहाँ पे औरतें मर्द हर कोई उसके अंदर शामिल होता है, तो वो कहते हैं ये जो आप फोर्स के बैंडिंग आप खुद कर रहे हैं, इसको पहले चेंज करें, इस तब्दीली को आप चेंज करें।
1: इसमें शाह साहब ज्यादा जिम्मेदारी किसकी बनती है? जो फैमिलीज हैं उनके सरबराह जो होता है उसकी जिम्मेदारी।
0: बिल्कुल बिल्कुल,
1: वही जाहिर है। अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं अपनी वाइफ को नहीं इसमें शामिल करूँगा सियासी, और जब बाज़ दफ़ा हम देखते हैं ना डैनिश चैनल खबरें आती हैं, तो मैं वाइफ को बैठी होती है घर में, तो कहता हूँ कि ये कुछ समझ आई है, या मैं उसको समझाने की कोशिश करता हूँ, तो दिलचस्पी लेती है। लेकिन इसमें किरदार तो वही सरबराह का है कि उसने किस हद तक अपने बच्चों को या अपनी फैमिली को शामिल करना है डैनिश सियासत।
0: जी बिल्कुल, आपने सही कहा। आप अपने बच्चों को जो है ना वो ब्लॉक करते हैं, आपने बच्चे जो हैं ज़हनी तौर पर उनको मफलूज कर रहे हैं, क्योंकि जब आपकी वाइफ और आपके बच्चे जो हैं वो छुट्टियों में या इस तरह के मेलों में या इस तरह की जो मुख्तलिफ मसलन फिलिप पार्क में होता है, वेलबी पार्क में कोई हो रहा है, तो आप उनको लेके जाएंगे तो वो देखेंगे कि माहौल कैसा है।
1: जी जी।
0: और ये जाना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ जो है कि फोल्डर्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, इनको स्कूल की जितनी मीटिंग्स हैं उसमें लाजमन शामिल होना चाहिए, ताकि इनको पता लगे कि हमारे बच्चे जो हैं उनकी जो बान एमन में है या स्कूल में है, बहुत सी जगह पे उनकी तरबियत कैसे हो रही है।
1: जी
2: ज़फ़र भाई शुक्रिया। इसमें अगर मैं कहूँ ख़वातीन के हवाले से जो हम बात कर रहे हैं, उसमें बहुत से पहलू हैं। एक तो अगर आप डैनिश सियासत को भी देखते हैं तो उसमें भी इतनी ख़वातीन जो हैं वो शमूलियत नहीं करती मर्दों के बनिस्बत। तो सियासत और ख़वातीन के जो शौक़ हैं ये दो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, ये भी हमें जो है वो इस पहलू को भी मद्देनज़र रखना चाहिए। दूसरा, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। अगर आप किसी अपनी बहन बेटी माँ को कहते हैं कि आप में वो काबिलियत है, आप क्यों नहीं करती, कह सकते आप, लेकिन आप उनको फोर्स नहीं कर सकते। दूसरा, अगर इसको साइड पे रख के दूसरा जो है, अगर हमारी ख्वातीन इस फील्ड में आती भी हैं, जो हमने यहाँ पे डेनमार्क में देखा कोई चंद ख्वातीन है हमारी जो फ्रंट फुट पे आई हैं सियासत के हवाले से, सामाजिक कामों के हवाले से, तो हमारी जो मर्दों की जो सोसाइटी है हम उनको एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं कि वो आगे आएं और काम करें। हम उनको अपने साथ आगे नहीं बिठाते, हम उनको आगे बैठने नहीं देते। हमारा वही जो थोड़ा सा कल्चर है, सारी जगह नहीं, कुछ जगह पे है कि औरतें जो है वो पीछे बैठें। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, ये यानी मिक्स हैं, आप इसको सिर्फ एक चीज़ नहीं कह सकते कि एक जो है वो इशू है और अगर हम उसको ठीक कर लें तो ठीक हो सकता है। अगर हम अपनी खवातीन को जगह देना शुरू करें और जहाँ पे हमारी खवातीन चाहती हैं जगह बनानी, जिस तरह ये मीने बाजार की बात कर रहे हैं और जगह पे, वहाँ पे वो भरपूर अपने आप को वो स्ट्रॉन्ग फील करती हैं। लेकिन अगर वो, मेरे ख्याल में अगर वो चाहें सियासत में भी तो कर सकती हैं, लेकिन हम मर्दों को भी जो है वो चाहिए कि उनको जो वो उनकी जगह जो है वो हमें देनी पड़ेगी और देनी चाहिए।
1: अच्छा, इसमें रजा साहब दो फैक्टर मेरे जहन में जो आते हैं ज़ाती तौर पर, जो मैं महसूस करता हूँ। पहली ज़बान, अगर ज़बान आपको डैनिश नहीं ना आती तो लाजमी बात है वो दिलचस्पी नहीं लेगा, चाहे वो मेल है या फीमेल है। और दूसरा ये कि जब उसको ज़बान आ जाएगी तो वो दिलचस्पी किस हद तक लेता है। जैसा इन्होंने शाह साहब ने मिसाल दी कि मीना बाज़ार या जहाँ जितने कल्चरल प्रोग्राम होते हैं उनमें हमारी ख़वातीन अपने बच्चों फैमिली के साथ आती हैं, तो वो ज़ाहिर अपनी ज़बान होती है, बंदा खुले दिल से उनमें शामिल भी होता है,
2: उनका शौक भी।
1: तीसरा फैक्टर आप जो बता रहे हैं ना कि ये सरबराह की ज़िम्मेदारी है कि वो उनको कैसे आगे पहुँचा सकते हैं या उनमें लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है तो वो कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। तो शाह साहब ये चीज़ें वही जो मैंने अर्ज़ किया कि सरबराह की ज़िम्मेदारी है, और सबसे पहले जो एक ज़बान का जो मसला होता है, अगर वो ज़बान नहीं सीखेंगी या ज़ाहिर है तो वो कभी भी दिलचस्पी नहीं ले सकती।
0: ज़बान का कोई मसला नहीं है। अच्छा। ज़बान का डेनमार्क में जब हम 70s में आए थे तो मोस्टली हमारे जो कलीग्स थे वो सारे गांव से तलक रहते थे, ना इंग्लिश बोलनी आती थी ना डैनिश बोलनी आती थी। ये चीज़ नहीं है, आप कम्युनिकेट कर सकते हैं, कम्युनिकेशन जो है वो इशारों से भी कर सकते हैं, बता भी सकते हैं आप। मैंने ये देखा कि जो हमारे कुलीग्स हैं ना, जो जिनको बिल्कुल ना अंग्रेज़ी आती थी डैनिश, वो अपना दूसरी ज़बान, वो डैनिश ज़बान बहुत जल्दी से सीखे। और जो हम लोग स्कूलों में गए थे तो हम ग्रामर्स में पढ़े रहे। अब मैं जो बात कर रहा हूँ ना कि हमारी लेडीज़ को ज़बान आए ना आए, जब वो अपनी इलाके की औरतों से जो पढ़ी लिखी हैं, माशाल्लाह हमारी बेटियां जो हैं, हमारी औरतें जो हैं इस वक्त डॉक्टर्स हैं, साइंटिस्ट हैं और फॉरेन मिनिस्ट्रीज में हैं, हर शोबे में हमारी जो बेटियां हैं वो बहुत चढ़ गई हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो है वो आपने जो कहा घर का सरबराह, हम अपनी आन का मसला बना लेते हैं, हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चे दूसरे जाएं। लेकिन हम एक चीज़ भूल जाते हैं कि हम जब कोई गांव का मसला होता है या पीछे गांव का मसला होता है, कोई चीज़ होती है, डेली टेलीफोन पे अपने बच्चों के साथ बताते हो फलाने ने ये कर दिया, फलाने ने भैंस ले ली, फलाने ने कोठी बना ली, लड़ाई झगड़े की बातें, ये खुदा रहा आप बच्चों के सामने बैठ के बिल्कुल बात ना करें। क्यों कि इस तरीके से आपके बच्चे जो हैं वो घर से फेड अप हो जाते हैं और उनके ज़हनी तौर पे वो मासूम होते हैं और वो ज़हनी तौर पे इस चीज़ को जज्ब कर लेते हैं कि लड़ाई झगड़े के अलावा बात नहीं, बच्चे सहम जाते हैं। लिहाजा बच्चों को जो है वो बाहर लेके निकले, उनको पता लगे कि हमारी माँ की भी वक़्त है, हमारी भी है, और ये बाहर निकल के जो है ये एक अच्छे बच्चे देखे। जो फैमिलीज इस वक्त बहुत बाहर रह रही हैं, मुसवर रजा भी जानते हैं, आप भी जानते हैं, बहुत सारे हमारे बच्चे जो हैं फैमिली जो हैं वो छोटे छोटे टाउन्स में, कोपनेगंज वेस्टाइन में और दूसरी जगह रह रहे हैं, आप उनको कभी नहीं मिलेंगे। लेकिन उनके बच्चे जो हैं और वो लेडीज़ उनकी जो हैं वो जहाँ पे भी डैनिश फेस्टिवल या कोई ऐसी चीज़ होगी वहाँ पे आपको वो ज़रूर नज़र आएंगे। तो आप अपने बच्चे की खुद तरबियत कर सकते हैं और ये सबसे बेहतर,
1: ये एक नेचुरल चीज़ है शाह साहब। अगर वो अपना कल्चर है तो उसमें ईजी होकर वो अपने
0: सब कल्चर डैनिश हमें।
1: रजा साहब आप कुछ सेकंड करें।
2: जी मैं उसमें ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह हमारी यहाँ पे कुछ तंजीमें सियासी भी हैं, मुस्लिम लीग काफ के ये आप चेयरमैन है मेरे ख्याल में, तुकीर शाह साहब
0: नहीं मैं था
2: तो इस वक्त अभी आप नहीं है। अच्छा, लेकिन इसी तरह हमारी जो पाकिस्तान सोसाइटी है और पाकिस्तानी कितनी तंजीमें हैं यहाँ पे, तो पहली बात अगर तो आप एक वुमन विंग बनाते हैं फॉर एग्जांपल किसी भी तंजीम में, लेकिन अगर आपने औरतों को जगह देनी है जिनकी बात कर रहे हैं, तो आप उनको सदर भी बना सकते हैं, नायब सदर भी बना सकते हैं। लेकिन बदकिस्मती से हमारी जो तंजीम बन गई है ना, उसमें उतने ही मेंबर हैं जितने ओहदे हैं। ठीक है, एक सदर हो गया, नायब सदर हो गया, चेयरमैन हो गया, अच्छा फिर जी वो जनरल सेक्रेटरी हो गया, खजांची हो गया, अगर उसमें कुछ ओदे आपने ऐड करने हैं, फिर एडवाइजर चू ना सदर एडवाइजर सीनियर जूनियर, यानी इस तरह ओदे आपने बांटने हैं, उसमें वर्कर तो है ही नहीं या ना आम मेंबर है, ठीक है। तो जितने अगर आप किसी भी तंजीम को आपने देखना है ना, उसमें आप देख लें कि उसके ओदे कितने हैं, उतने ही उसके मेंबर होंगे, उसके ऊपर नहीं। हमारी तंजीमों ने आज तक खवातीन को वो जगह नहीं दी, ना उनके विंग बनाए हैं वुमन विंग, ना उनको जो है वो मेन जो तंजीम है उसमें जो है हिस्सा लेने की जो है इजाज़त दी गई है।
1: लेकिन बात वही आती है कि सबसे पहले हम अपने मेल जो पर्सनैलिटीज़ हैं यहाँ, जितनी भी तंजीमात के साथ अटैच हैं या तंजीमात से बाहर हैं, जब तक वो ही इकट्ठे नहीं हुए, इतफाक या मुतफिक नहीं होंगे, तो उसके बाद तो फीमेल तो बहुत
2: है। आपको मैं एक वाक्य सुनाता हूँ। यहाँ पे टाउन हॉल में हमने एक सब ने मिल के जो है डेमोस्ट्रेशन या मुजाहरा किया था, जिसका नाम था कि ना अच्छे अच्छा होगा इसमें या अच्छे फल, याद होगा सब लोग। अच्छा, उसमें जनाब जो मीटिंग होती थी तो सब कहते थे जी अपनी अपनी खवातीन को बच्चों को लेके आना है। अच्छा, जब वहाँ पे उसके बाद मुझे याद है जी सीनियर स्टाम्प वहाँ वैल्यू से टेस्टी में वहाँ पे मीटिंग हुई, खाना शाना खाया, क्योंकि खाने के बगैर हमारी मीटिंग और कोई फंक्शन होते भी नहीं है। तो खैर वहाँ पे हम पहुँचे तो आखिर में जो सारे अपने अपने वो तजिए देते रहे कि हमारी खवातीन कहाँ थी, तो मैंने कहा कि जी पहले तो हम अपने आप को देख लेना कि मैं रजा मुस्तफ़ा अपनी फैमिली को लेके आया था कि नहीं आया था, ठीक है। तो हम जो वहाँ पे थे ना, हमारी खवातीन नहीं थी वहाँ पे, हमारी बहनें भी नहीं थी, बेटियां भी नहीं थी, ठीक है। हम सिर्फ ना तवक्को करते हैं दूसरों से कि दूसरे काम करें, हम खुद नहीं करते, बातें हमसे करवा लें जिनके पास माइक है, कलम है, कोई ओहदा है, ठीक है। बातें करने में हम माशाल्लाह हमारे से आगे कोई नहीं निकल सकता। तो यह कि जब तक हम खुद अपने अंदर गिरेबान में झांकेंगे नहीं, अपने आप को नहीं, वो जो हम दूसरों से तवक्को करते हैं, अगर हम वो खुद नहीं करेंगे ना, तो वो काम कोई भी नहीं करेगा।
1: मतलब ये हम सबको पता है कि एक मिसाल जो दी जाती है कि बच्चा जब भूखा होता है तो रोता है तो वो उसको मिलती है, माँ
2: दूध देती है।
1: इसी तरह जब तक हम इस तरह की सोच रखेंगे तो मैं नहीं समझता कि इसमें तब्दीली कोई आ सकती है। शाह साहब चलें आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं कि मौजूदा हुकूमत
0: में अगर
1: टाइम
0: एक मिनट के लिए कमेंट करना चाहता हूँ। बड़ी अच्छी बात की है रजा मुस्तफ़ा ने
1: जी।
0: पाकिस्तान डे होता है, 14 अगस्त होता है, 23 होता है, कोई भी हो
1: जी जी,
0: पाकिस्तान एम्बेसी में चंद खवातीन आ जाती हैं, हम अपनी जितने भी हम लीडरान हैं हम अपनी बेगमात को लेकर
1: ले कर जाते हैं, बिल्कुल ऐसे।
0: अच्छा, कोई खाने पीने का प्रोग्राम होता है, उसकी वजह क्या कि जो इस्लाम के अंदर औरत को तहफ़ात दिए गए हैं वो हम एक्सेप्ट नहीं करते, वहाँ मैं खुद क्यों ना हूँ। जब तक मैं आपके साथ एक औरत आई है, बैठी है, आपकी बेटी है, बीवी है, जो भी है, जब तक मैं बार बार उसको ऐसे घूर रहा हूँ, बार बार उसको देख रहा हूँ, बार बार उसको देख रहा हूँ, तो जब मैं ये चीज़ ख़त्म नहीं करूँगा उसको तहफ़्फ़ुज़ नहीं मिलेगा। और फिर आप भी शर्मिंदा होंगे कि यार ये शाह साहब हैं, देखें मैं इनको मना नहीं कर रहा, तो ये चीज़ें ये इनको हमें ख़त्म करना है। औरत को जैसे डैनिश औरत यहाँ पे फ्री फिरती है, घूमती है, इसी तरीके से इस्लाम में औरत को राइट है।
1: ये कितना बड़ा तजाद है हम लोगों में कि हमारी खवातीन बेटियाँ बहनें या बीवियाँ काम की मंडी में हैं, यानी वो मजबूरन है या जो भी अगर वो काम कर सकती हैं डैनिश लोगों के साथ या दफातर में, तो ये मेरी समझ से। लेकिन ये ऐसे ही होता है शाह साहब, जैसे पाकिस्तानी कल्चर है ना हमारा, जिस तरह
0: नहीं नहीं नहीं पाकिस्तान में बड़ा एडवांस कल्चर है ये, आप छोड़
1: लेकिन दे। लेकिन मिसाल तो
0: हम किसी वक्त पाकिस्तान के नहीं नहीं नहीं नहीं
1: अभी
0: जब हम 50s में मैं पैदा हूँ, 1950s में मैंने खुद देखा कराची, क्वेटा, दूसरे लाहौर, सारे बड़े बड़े शहरों में लड़कियाँ गाड़ियाँ भी चला रही हैं, मोटरसाइकिल भी, हर एक चीज पाकिस्तान। ये नहीं उनको जिनको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, जिनके जो पढ़ी लिखी हैं, जिनको पता है कि भाई हमें हमें हम हफाजत से पहुंच जाएंगे, तो उनको वो हो सकता है
1: जी जी,
0: लेकिन हम खुद जो है वो नहीं बदले।
2: जफर भाई इसमें अगर मैं एक थोड़ा सा कमेंट्स कर दूं ना कि अगर आप मैं जो पहले बात की थी ना कि अगर हमारी खवातीन चाहें तो वो कर सकती हैं,
1: कर सकती हैं,
2: उनका अपना शौक भी नहीं है सियासत, ठीक है। ये आप ये भी आपको एक फैक्ट जो है ना वो मद्देनजर रखना होगा, इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप हमारी शादियां देखते हैं ना, तो वहां पे हमारे खवातीन जो हैं खुशी मनाती हैं, डांस करती हैं, वहाँ पे भी मर्द होते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन वहाँ पे जो है वो मेहंदी भी लेके आ रही हैं, हर चीज़ हो रही है, तो जहाँ पे वो चाहती हैं वो कर सकती हैं, ठीक है। तो ये सिर्फ मर्दों पे भी नहीं है कि वो उन पे पाबंदियां लगाते हैं या जगह स्पेस नहीं देते, वो खुद भी उसमें अपनी स्पेस बनाना भी नहीं चाहती। तो ये एक जो है ना बड़ा मिला जुला सा है कि अब यहाँ पे रेडियो हमवतन पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ हमारी कितनी बहनें खवातीन जो हैं वो काम कर चुकी हैं, अभी भी करती हैं, आती हैं। तो ये है कि आपने एक उनको माहौल देना है, ठीक है, वो यहाँ पे जब आप अपने आप को कॉन्फिडेंट समझेंगी तो वो आती हैं, ठीक है, प्रोग्राम करती हैं, प्रोग्राम करके चली जाती हैं, लेकिन ये उनके अपने शौक पे है। जफर भाई, हम किसी पे जो हमारी बहनें अभी जो रेडियो सुन रही हैं उनको कहेंगे जी आप आके रेडियो करें या आप आके सियासत में बैठें या कोई तंजीम, हमारी तो तंजीमें माशाल्लाह वो भी ऐसी हैं ना कि एक बार जरा सदर बन गया ना ताया सदर ही बन गया, उसने उतरना नहीं है, उसने मर के ही जो है ना वो कहीं जो है वो अपनी कुर्सी छोड़ेगा, वरना कुर्सी नहीं छोड़ता।
0: नहीं, मैं मसलन एक छोटा सा कमेंट करता हूँ इनके बात को आगे बढ़ाकर। मेरा ये कहने का मतलब है कि जहाँ पे सियासी प्रोग्राम हो रहे हैं वहाँ हमारी औरतें आकर बता सकती हैं, कौंसलर्स जो हजरात हैं या ऐसी सियासत में हिस्सा लेने वाली औरतें वो उनको बता सकती हैं कि हमारी जो डेली लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स है। मसलन हमारी बहुत सारी ऐसी खवातीन हैं जिनको यहाँ से नेक्स्ट वेट जाना पड़ता है
1: जी,
0: अगर वो वीज़ा लेने के लिए जाना चाहती हैं, कोई उनको काम है उलानी शुरू से उधर जाना पड़ता है, लेकिन शीलैंड के अंदर और फ्यून के अंदर और यूलैंड के अंदर वहाँ आप देखें कि वो घर से उठती हैं सीधा बॉस सर्विस जाती हैं और वहीं पे उनके सारे काम हो जाते हैं। यहाँ पे क्यों नहीं, क्यों यही चीज़ें जो हैं मेजॉरिटी हमारी औरतें जो हैं जो अल्लाह ताला उनकी ज़िंदगी लंबी करे, बेवा हैं या वो किसी वजह से डिवोर्स हो गए हैं, वो कोपेनहेगन और वेस्टाइन में रहती हैं और इनके मसाइल जो हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो उनको उनको अपने ऐसी सियासी जो एक्टिविटीज होती हैं उनके अंदर बुलाना चाहिए ताकि वो आके अपनी बात दिल की बात कर सके।
2: तो किशा साहब, आप जो हैं वो फ्री कॉइन के जो है स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं ये पिछले जो कमून के इलेक्शन हुए हैं,
0: जी जी,
2: वहाँ पे खवातीन जो हैं वो अपनी कॉर्नर मीटिंग करती रही हैं, ये इसके ये बेहतर आप बता सकते हैं, हमने तो सिर्फ जो मीडिया पे तस्वीरें देखी या जो सुना है उसके हवाले से। हमारी जितनी भी पार्टियां यहाँ पे उनकी जो काफ़ी खवातीन हैं जो सिर्फ खवातीन के फंक्शन करती तो होते हैं, करती हैं, ये कॉर्नर मीटिंग भी करती हैं, लेकिन तब जब हमारा अपना कोई मकसद हो, क्योंकि किसी का कोई बेटा खड़ा था, किसी का कोई भाई खड़ा था, तो उसने जो है उसकी सपोर्ट में हाल लिए, खाने भी खिलाए, लोगों को बातें भी सुनाई, उन सियासतदान भी वहाँ पे आए, तो होता है करते हैं, लेकिन सिर्फ तब जब हमारा अपना जो है कोई मकसद होता है।
0: जी बिल्कुल सही बात की।
1: लेकिन ये सारी बातें बजाय आप फरमा रहे हैं शाह साहब आप भी और रजा साहब आप भी, लेकिन हमें तलाश करनी है क्या वजूहात हैं, क्यों नहीं ये इस तरह हो सकता। अगर वो बाकी काम सारे कर सकती हैं या हमारे मेल पर्सनैलिटीज़ कर सकते हैं तो वो क्यों नहीं कर सकते, यही हमें तलाश करना है। और इसके लिए वही बात के इंफरादी तौर पर इज्तिमाई तौर पर हमें हमारी सोच को इकट्ठा होना पड़ेगा, ऐसे ही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा शाह साहब, एक तो फ्री होने का आपने ज़िक्र किया तो एक सवाल मेरे जहन में आ गया कि सियासी शख्सियत हैं जनाब मलक सिकंदर सदीक साहब, उनको पिछले दिनों हमने सोशल मीडिया पे देखा और सुना भी कि उनको एक तमगा इम्तियाज़ दिया गया है पाकिस्तान एम्बेसी की तरफ से। तो ये एकदम देख के पता चला, क्योंकि इससे पहले प्रोग्राम पाकिस्तान एम्बेसी में हुआ था ये ईद के हवाले से, या तो इस हवाले से अगर आप कुछ फरमाना चाहें मुख्तसरन।
0: ये बिल्कुल सिकंदर सदीक को तगमा मिला है, लेकिन वो तगमा जो है वो एम्बेसी की तरफ से नहीं मिला, वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से मिला है।
1: जी जी,
0: आप मलिक सिकंदर सदीक जो है जब ये अल्टरनेटिव का मेंबर था, पार्लियामेंट का मेंबर, रजा मुस्तफ़ा को याद होगा, तो इसने कश्मीर के ऊपर काफ़ी और फलस्तीन के ऊपर काफ़ी बोला था।
1: अच्छा।
0: और फिर इसने काफ़ी वहाँ पे हिस्सा लिया था, वो रिपोर्ट जो थी फॉरेन मिनिस्ट्री से फॉरेन मिनिस्ट्री के पास गई।
1: अच्छा।
0: और उसके ऊपर उन्होंने वर्क किया और फिर इसको जो है ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने रिकमेंड किया।
1: अच्छा।
0: फिर इनको इमरान खान की गवर्नमेंट आ गई, वहाँ पे इसको जो है वो पर्चे पर्चा रख दिया गया, उसको नहीं मिला।
1: अच्छा।
0: फिर इस गवर्नमेंट में आकर तो इसको उन्होंने ये जब पाकिस्तान गया तो इसकी मुलाकात हुई मुख्तलिफ प्राइम मिनिस्टर से भी दूसरों की सबसे, तो उन्होंने इसको तखमे को बहाल कर दिया।
1: अच्छा। तो वो दिया
0: तो ये इसको मिला है, और इससे पहले भी दो पाकिस्तानियों को जो है यहाँ पे तखमा इम्तियाज मिल चुका है।
1: अच्छा,
0: और ये मिलना चाहिए। देखिए यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ऐसे नाम हैं जिनको मैं जाती तौर पे जानता हूँ, जैसे कि अभी हाजी मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा साहब के बारे में हमने बात की, ये ऐसे लोग हैं जिनके जिनको डिप्लोमा या कोई ऐसे शील्ड या ऐसे नाम जो है एम्बेसी की तरफ से या अपना क्या नाम है पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से मिलने चाहिए तखमे। देखिए पाकिस्तान में एक डांस करने वाली को तखमा मिल जाता है, अच्छा एक गाने वाली को तखमे मिल जाते हैं, तो यहाँ जो फॉरेन कंट्रीज के अंदर पाकिस्तानी जो हैं जो अपनी कौम के लिए बड़ा कुछ कर रहे हैं उनको भी तखमे मिलने चाहिए। बिला शुबा हमारे आपस के अख्तलाफात हैं, हम एक दूसरे को पसंद नहीं करते, एक दूसरे की सियासत को पसंद नहीं करते, लेकिन ये चीज़ होनी चाहिए। और जहाँ पे एम्बेसी ने ये काम किया तो एम्बेसी ने उस वक्त मुझे सिकंदर मलिक ने खुद बताया टेलीफोन करके, उन्होंने कहा कि अंकल जी देखें कि एम्बेसी ने सिर्फ मेरे अपने जो फैमिली थी जान उनको बुलाया और ये ओपन पब्लिक नहीं किया गया, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये तगमा भेजा था एम्बेसी में ताकि आप जो है वो सदर की तरफ से आप इनको ये तगमा दे दें। इस तरह ये एक छोटा सा फंक्शन कर
1: वैसे ज़्यादा मैं समझता हूँ कि हमारी कम्युनिटी को भी खुशी होती है ज़्यादा कि अगर जब पाकिस्तान एम्बेसी में प्रोग्राम हुआ है तो उस वक्त अगर क्योंकि मलिक साहब उधर ही थे और मैं भी उधर था आप भी थे उधर ही तो उसमें अगर दिया जाता तो वो ज़्यादा
0: मैं आपकी बात को समझता हूँ, लेकिन यहाँ पे ग्रुपिंग है, यहाँ पे ग्रुपिंग है और ग्रुप जो है वो नहीं चाहते कि कोई ऐसी चीज हो, तो इसलिए एम्बेसी की भी मजबूरी समझे और उन ग्रुपों की भी।
1: और सोशल मीडिया पे रजा साहब काफी मतलब वैसा भी इस पे उतर रहा
2: और एम्बेसडर साहब पे भी काफी जो है वो तनकीद हुई है कि वो बायस्ड हैं, यानी कि वो साइड लेते हैं, और ये मेरे ख्याल में कुछ इसमें हकीकत भी है, ये सब गलत नहीं है जो लिखा गया था या जो कहा गया है कि एम्बेसी जो है वो फर्क करती है, और इस मरतबा जो एम्बेसडर है उन्होंने किया है बज़ाहिर नज़र भी आता है, ठीक है। और ये लोगों के जो कमेंट्स हैं जो वो लिखते रहे हैं उसमें बिल्कुल अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो आपको वो चीज़ जो है वो नज़र आती है। एक फंक्शन में वहाँ पे जब एम्बेसडर साहब गए थे तो इंटरव्यू के लिए कहा गया तो उन्होंने कहा है कि जी मैं सिर्फ पीटीवी को इंटरव्यू दूंगा, यहाँ के लोकल मीडिया को मैं इंटरव्यू नहीं देता।
1: बिल्कुल ऐसा ही है।
2: तो भाईजान की जो हैं वो आंखें जो हैं वो माथे पे हैं, तो ठीक है आप पीटीवी को ही इंटरव्यू दीजिएगा, लोकल मीडिया को बेशक न दें, तो ये है कि वो फ़र्क है। लेकिन तुकीर शाह साहब मैं तो शुक्र करता हूँ कि ये तगमा जो है मुझे नहीं दिया गया, क्योंकि इस मरतबा और पिछले कुछ सालों से जिस तरह तगमे जो है ना वो बांटे गए हैं ना वो इस तरह जिस तरह रेवड़ियाँ नहीं बांट दे, ठीक है इस तरह बांटी गई हैं, ऐसे ऐसे लोगों को दिए गए हैं जो नॉर्वे से एक मफरूर है करोड़ों का जो है वहाँ पे टैक्स का गबला करके गया हुआ पाकिस्तान में है वहाँ पे, और जनाब वो एक गैर मुल्की दौरे पे भी थे और उनको भी जनाब तगमे से जो है वो नवाजा गया है, ठीक है। तो अगर ऐसे लोगों को तगमे मिले तो अल्लाह का शुक्र है, हमें ना ही दें तो हम बेहतर हैं।
0: नहीं यहाँ पे ये होना चाहिए कि एम्बेसी देखिए जैसे इंग्लैंड में था, इंग्लैंड में जब मैं वहाँ पर स्टूडेंट था तो मैं ये देखता था कि वहाँ पे बकायदा जब कोई पाकिस्तान डे होता था 14 अगस्त या 23 मार्च या कोई भी दिन होता था तो उनके पीआईए की वो कल्चर जो सोसाइटीज़ होती थी जो उनकी कमेटीज़ होती थी वो कराची से आके वहाँ पे वो गोरे भी बैठे होते थे, हम लोग भी बैठे होते थे, उनके सामने वो पाकिस्तान का कल्चर पेश करते थे, ये एम्बेसी कराती थी। यहाँ पे जो चीज़ है वो क्वाइट डिफरेंट है। यहाँ पे चार ग्रुप हैं, उन चारों ग्रुप की जो है वो ग्रिफ्ट है एम्बेसी के ऊपर, कोई माने या ना माने। तो मैं तो एम्बेसी सिर्फ उस वक्त जाता हूँ जब कोई पाकिस्तान डे होता है, नॉर्मली मैं वहाँ नहीं जाता, क्योंकि मैं एहतराम करता हूँ कि ये मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्वालिस नहीं है कि आप किसी भी सफारतकार को, जो भी आता है सफारतकार, उसकी आप इज्जत और एहतराम करें। तो बाकी जो रज़ा मुस्तफ़ा ने बात की, ये सिर्फ रज़ा मुस्तफ़ा नहीं, बहुत सारे लोग इस आवाज़ को उठा रहे हैं कि अगर आपने ये तगमा देना था तो आप ओपन करते, ताकि यहाँ पे लोगों को पता लगता कि भाई उनको किस बेस पे और किस चीज़ पे मिला। ये खुशी की बात है,
1: ये हमारे लिए खुशी की बात है।
2: देखें, जैसे हम पहले बात कर रहे थे ना खवातीन की भी, कि उनकी हम उनको सियासत में नहीं लेके आते, आगे नहीं आती, ये है वो। देखें, यहाँ पे हमारी जो सोसाइटियाँ हैं, यहाँ पे जो हमारी एम्बेसी है, हमें तगमा इम्तियाज़ की ज़रूरत नहीं है। हमें तगमा डेनमार्क भी बना सकते हैं कि एम्बेसी में एक हर साल 14 अगस्त या 23 मार्च पे एक फंक्शन हो, जहाँ पे अब हमारे एक डॉक्टर कयूम साहब हैं, उन्होंने डॉक्टरों के लिए किताब लिखी है, ठीक है,
0: जो अब्बास कयूम,
2: बिल्कुल ठीक है,
0: पीएचडी की है, उनकी सिस्टर ने भी की है।
2: उससे पहले जनाब उन डॉक्टर साहब ने एक दिल का जो है वो एक ऐसा नुस्खा निकाला था, ठीक है। हमारे इस तरह के और कितने लोग हैं यहाँ डेनमार्क में, आपने पहले खुद जिक्र किया कि हम फॉरेन मिनिस्ट्री में बैठते हैं, हम वहाँ बैठते हैं, यहाँ पे कितने लोग हैं जिन्होंने ऐसे ऐसे कारनामे अंजाम दिए हैं और दे रहे हैं, ठीक है। हमारे बुजुर्ग जो आज अल्लाह ताला को प्यारे हो गए, जो 70 की दहाई में आए थे, ठीक है, उनके जो अगर आप खिदमात देखते हैं, जो उन्होंने अपने पाकिस्तान में फैमिलीज को पाला, यहाँ बच्चों को पाला, यहाँ कम्युनिटी के लिए जो काम किए, उनकी जो तालीम और उनका जो वक्त था, अगर आप उसको देखते हैं तो जो काम वो कर चुके हैं वो आज हमारे पास गाड़ियां भी है, पैसा भी है, घर भी है, हर चीज है, जुबान भी है, लेकिन हम वो काम नहीं कर सके जो उन्होंने कर दिए। तो अगर वही एक तसलसल चलता और अवार्ड दिए जाते हर साल, जो ये डीपैक ने थोड़ा सा शुरू किया था कुछ साल पहले,
0: नाम भी अवार्ड दे, एक लिस्ट होनी चाहिए जिसके ऊपर ऐसे अजीम लोगों के नाम होने चाहिए कि इन्होंने गुमनाम हसीयत में या नाम के हसीयत में कम्युनिटी के लिए काम किया, और हम उनको एक एम्बेसी में उनकी लिस्ट लगा रहे हैं या मीडिया में दे रहे हैं।
2: थोड़ा सा चले और कुछ नहीं तो 5-10 लाइनें ही उनके बारे में लिख दी जाती कि फलां जगह पे पैदा हुए थे, फलां जगह पे जो है वो तारीख को फौत हुए हैं, और उनकी डेनमार्क में ये खिदमत है। हम हमारे जो है वो हज पे लेके जाते थे जनाब, क्या नाम है उनका, ग्लासहाक से में रहते थे उनकी तंजीम,
1: मकबूल भट्टी साहब,
2: ठीक है जनाब, उनकी कितनी, हाजी साबर साहब, उनकी कितनी खिदमत है। इस तरह के हजारों यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं जो इस दुनिया से अब चले गए हैं, जिनकी इतनी खिदमत है। तो सिर्फ 5-5, 10-10 लाइनें ही उनके बारे में हमारे बच्चों, हमें तो शायद पता हो जो सेकेंड जनरेशन है, लेकिन जो हमारे बच्चे और उनके बच्चे हैं, उनको कौन बताएगा कि जी यहाँ पे फलाने बुजुर्ग थे और उनकी जो ये यहाँ पे खिदमत थी।
1: बस ऐसा ही है रज़ा मुस्तफ़ा साहब, मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान एम्बेसी का ये जो वतीरा काफ़ी अरसा दराज से इस तरह का रहा है कि वो बस इसी तरह, बस जैसा आपने भी फरमाया कि ग्रुपिंग की शक्ल में बस इस तरह के काम होते हैं, लेकिन होना तो ये चाहिए कि पाकिस्तान एम्बेसी हमारा एक पाकिस्तान का घर है और हमारा घर है, और उसके सामने अपने मसाइल हम पाकिस्तान की तरफ से, यहाँ की तरफ से भी रखते हैं, और वो अगर इज्तमाही तौर पर या इनफरादी तौर पर अच्छे तरीके, मुस्बत तरीके से उनको हैंडल करें, तो मैं समझता हूँ कि हमें ये शिकायत कभी ना मिलें। तो बहरहाल रिक्वेस्ट तो यही है कि जो भी एम्बेसडर यहाँ आते हैं वो अपने आप को गैर जानबदाराना तौर पर अपनी खिदमात को या अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाएं, तो इससे हमारी कम्युनिटी भी ज़ाहिर खुश होगी। तो शाह साहब, आखिर में कोई बात ऐसी ऐड करना चाहिए तो, और उसके बाद प्रोग्राम को वाइंड अप करें।
0: जी, मैं सिर्फ एक बात करना चाहता हूँ कि अपने जितने भी मेरे साथी हैं जो 70s से और अब तक चले आ रहे हैं, मैं इनसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि खुदा रहा अब ये पुरानी रंजिशें छोड़ दें
1: जी।
0: और अपनी जो तीसरी चौथी नस्ल हमारी यहाँ पे आ चुकी है, کم از کم ان کے لیے ہمیں ایک ایسا راستہ اختیار کرنا چاہیے، ایسی چیز بنانی چاہیے کہ کل کو وہ ہمیں اچھے نام سے یاد کریں اور ہمیں جو یہ فنکشنل ہے، بلکہ میں نے اگلے دن مجھے ڈینشو نے کہا ہے اور میں نے چند ایک ینگسٹر سے بات کی ہے اور آج میں اوپن اس پہ بات کر رہا ہوں کہ ہمیں ایک کلچرل جو ہے، کلچر کی جو ہے، ڈینش پاکستان کلچر جو ہے، اس کی ایک بہت بڑی پورے ڈینمارک بیس پہ ایک سوسائٹی بنانی چاہیے جس میں صرف پاکستانی نہ ہوں بلکہ ان کے اندر ڈینش بھی ہو اور ہم اس کو لے کے آگے چلیں تاکہ یہ جو ڈفرنس پیدا ہو چکا ہے مسلمانوں کے اندر اور ڈینش کے اندر، ہم ان کو جو ہے وہ بتا سکیں کہ یہ چیزیں جو ہیں اس سے ہمارے اپنے لوگ بھی ایجوکیٹ ہوں گے اور ان سے ڈینشوں میں جو معمولی سی نفرت ہے تھوڑی سی، دیکھیں ہم سب سے بڑے راشسٹ میں بیٹھا ہوں آپ کے سامنے، جب تک میں اپنے دل سے یہ نفرت اور قدور نکال نہیں سکوں گا میں کس طرح کہہ سکتا ہوں جی کہ شیخ صاحب میں آپ سے بات کر، ہمیں پلائڈ ہونا پڑے گا، ہمیں سننا پڑے گا، ہمیں برداشت کرنا پڑے گا اور یہی ہمیں اسلام میں سکھلایا گیا ہے کہ ہمیں ذات پات سے نکلنا پڑے گا، ہمیں محبت کا درس جو ہے وہ دینا پڑے گا، ہمیں یہ غلط فہمیاں جو ہیں یہ آپس میں دور کرنی چاہیے تاکہ ڈنمارک کے اندر اسلام جو ہے اس کا نام اس کے نام کو بلند کیا جائے۔
1: جی بہت بہت شکریہ شاہ صاحب۔ تو مزید ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام اور اس میں جتنی بھی باتیں ہوئیں ہم نے اپنی طرف سے مثبت طریقے سے کیں اور ہماری کوشش یہ رہی شاہ صاحب کی طرف سے بھی اور ہم سب کی طرف سے بھی کہ اس پلیٹ فارم سے جتنی بھی باتیں یا جس طرح کے بھی پروگرام آپ کے سامنے پیش کیے جائیں ان کو اچھے انداز میں پیش کیا جائے اور اچھے طریقے سے مسائل کے حل نکالنے کے لیے پیش کیا جائے۔ تو امید کرتا ہوں کہ اگر آپ ہمیں فیڈ بیک ہمارے پروگرامز میں دیتے رہیں گے، سنتے رہیں گے، دیکھتے رہیں گے تو اس سے ہماری حوصلہ افزائی بھی ہوگی اور ہم کوشش کریں گے کہ آنے والے دنوں میں ان مسائل پر اچھے طریقے سے ان کو ہینڈل کیا جائے تاکہ ہماری جتنی بھی پریشانیاں یا ٹینشنز ہیں ان مسائل کے حوالے سے ان کو ختم کیا جائے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، چلتے چلتے پاکستان زندہ باد اور ڈنمارک پائندہ باد۔